ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय

त्रयवतु, गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः, हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय, ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत।